एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जान है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बद

केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्त तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

जी वो भी क्या दिन थे जब स्कूल में थे कॉलेज में थे बट द एक्चुअल फ्रेंड्स द वन यू कैन मीट आफ्टर ऑल ऑफ दिस फेजेस ऑफ लाइफ लिटरली व्हेन लाइफ एक्चुअली बिगिंस लाइफ आफ्टर स्कूल लाइफ आफ्टर कॉलेज एंड लाइफ व्हेन यू आर एक्चुअली लाइफिंग लिटरली दैट्स व्हेन यू एक्चुअली फील लाइक हां अगर ये दोस्त बनाया तो डेफिनेटली ये परमानेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड फ्रॉम दैट नोट आई हैव वन पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर माय पल्टन एज वेल इट्स यारी दुनिया पे भारी द वोकल्स ऑफ अरमान मलिक हैज टू बी इंक्रीज the volume and enjoy. Celebrate your best friend today because, hey, you have a chance.

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: और सामिन, क्योंकि बेमिसाल अंदाज एक परिवार है, तो जब कोई जन्मदिन होता है या कोई मरने का दिन होता है तो दोनों मनाए जाते हैं। दोनों, एक तो रिकग्नाइज किया जाता है, दूसरे मनाया जाता है। तो सामिन, कुलवंत सरोई हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं, कृष्ण सरोई की अहलिया हैं। तो उनके जो हैं भाई साहब सरदार ज्ञान सिंह बदन, यहाँ पर रहा करते थे एक ज़माने में, ज्ञान सिंह बदन। पर यहाँ से फिर वो चले गए यूनाइटेड किंगडम, वहाँ जाके सेटल हो गए और वहीं पर 2 जून इनका इंतकाल हो गया है। ज्ञान सिंह बदन को अगर कोई जानता है, ना नहीं भी जानता, तो प्लीज़ दिल में उनके लिए ज़रूर दुआ करें। जाने वाले के लिए दुआ की जाती है हर धर्म में। और चंद्रिका वसंत गोसाई, पहली लिसनर हमें मेरे नाम से मैसेज करने वाली, सो मुझे पता है कि ये हमारे लिए है। थैंक यू सो मच इंडीड। और बेमिसाल अंदाज वालों को, सभी को विश किया है अमीर अली राणा ने, फैमिली को गुड मॉर्निंग कहा है। कहते मसला ये नहीं कि ख्वाहिशें अधूरी रहें, कहते हैं गए दुख ये हैं कि बची हुई जिंदगी अब घुटन सी लगती है। अच्छा, बची हुई जिंदगी अब घुटन सी लगती है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये जो इम्प्रेशन है, ये जो जज्बा है, रहता नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है, वक्ती आप फील करते हैं। अमीर अली राणा, दैट्स व्हाट आई फील, कि ख्वाहिशें अधूरी रहीं। कहते हैं कि एक्चुअली दुख तो ये है कि बची हुई जिंदगी अब घुटन सी लगती है। थैंक यू रूपल, आपने कहा न्यू डे न्यू वीक मंडे, और कहते हैं जीवन चलने का नाम। अच्छा, जीवन में चलने चलते चलते जाइएगा। ओके, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं गाना आपकी फरमाइश पर। और चिराग पटेल कराटीना से कहते हैं हाउ वॉज योर वीकेंड, होप इट वेंट वेल। अच्छा समन, कल रमेश सोनी हमारे बड़े अच्छे लिसनर थे, तो उनके घर में ब्रंच, पहली बार मैंने सब गुजराती खाना खाया, ब्यूटीफुल खाना, एक एक चीज आपके सामने बनी हो, आप देख रहे हैं कि वो बन रही है और आपके लिए थाली में वो परोस रहे हैं। कमाल का फ्रेश ब्रंच, पहली बार गुजराती ब्रंच था, और क्या यूनिक चीज़ें थी, जैसे कि पनीर का जो पराठा था बड़ा डिफरेंट था, पनीर के समोसे वगैरह, उफ, ढोकरा, बहुत कुछ था। और एक जिसको कहते हैं खिची, वो भी थी कमाल का। ये चिराग पटेल, मैंने आपको कहना था कि ये हमारा था वीकेंड। और कहते माइन वॉज अ गुड वन, रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग जस्ट फॉर येस्टरडे एट होम फॉर मोस्ट ऑफ द डे। सभी ने, जिसको भी मैंने पूछा सुबह सुबह जिनके साथ मुलाकात हुई, कहते नहीं हम घर रहे थे, अच्छी बात है। अब यहाँ पर परवीन जी, प्यार भरे सत श्री अकाल, आपके प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, और एक मंथ हो गया है कि मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, थैंक यू फॉर द नाइस सॉन्ग। सिर्फ एक मंथ, लोग कहते हैं 26 साल से मेरे साथ, आप कहते हैं 1 महीना। और आप हैं कौन? वही लक्ष्मण सिंह जगदेव, लक्ष्मण, बहुत अच्छे, वेलकम टू बेमिसाल फैमिली। और आप इंजॉय करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर मुनीर कहती है किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो, दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। वाह क्या बात है, कहते कि दुनिया कमजोर है मगर दुनिया बनाने वाला नहीं, बहुत अच्छे मुनीर। रमेश हरिया, आज आपने सबसे ज्यादा एक्टिव श्रोता रितु गुप्ता जी समन, अगर एक्टिविटी देखी जाए, कंट्रीब्यूशन देखी जाए, तो रितु गुप्ता का बहुत योगदान है बेमिसाल अंदाज में। वी रियली अप्रिशिएट, हम करते हैं रितु आपको, और हैप्पी बर्थडे। भगवान, रमेश हरिया ने कहा है, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनकी झोली खुशियों से भरी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। ये रमेश हरिया ने कहा, थैंक यू सो मच। और समय रितु गुप्ता को तो ऑफकोर्स उनका डे आज हमने बनाना है, आपने और हमने मिलकर।
1: जिंदगी तब हसीन लगने लगती है जब उम्मीदें इंसानों से नहीं रब से हो जाती है। इसीलिए दोस्तों हर किसी को अपना मान लेना छोड़ दो, क्योंकि आजकल लोग फीलिंग से नहीं फायदे से जुड़ते हैं। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा आमद किसुमु।
0: हर एक को दोस्त मत समझा करो, आज दोस्ती का दिन है, बेस्ट फ्रेंड डे है, आज जरूर ऐसा करें। अगर हर एक को बना लोगे ना, अच्छी बात नहीं, आपका नुकसान होगा। वो कहते हैं आजकल लोग फायदे से दोस्त बनाते हैं। व्हाट अ थिंग, आजकल नहीं हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट फ्रेंड फायदे का होता है, अगर फायदा है तो बना लो वरना छोड़ के देखो। लेकिन हम एक आधा ये समिन दोस्ती पर चंद गाने हैं

0: खुदाई हैं लंदन से कहती हैं कि सभी बेमिसाल अंदाज के लिसनर्स को नमस्कार और धन्यवाद. आपका गाना जो सुनाया आपने मेरा फेवरेट है. ओके, प्यार का सागर से आपने लिया था, बहुत अच्छे. नितेश, आप हैं पार्कलैंड्स, फर्स्ट पार्कलैंड से. आपने रितु गुप्ता को भी विश किया है हैप्पी बर्थडे और वैसे हैप्पी मंडे सभी को. और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ बैट कैन ईट अप टू 1000 मस्कीटोज इन अ सिंगल नाइट. ये बैट जो होती है ना, इसको क्या कहते हैं, बैट को भूल गई हूँ मैं, लेकिन ये जो रात के वक्त निकलती है, कहते हैं 1000 मच्छर निकल जाती है. मेकिंग इट अ पावरफुल नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, कहते हैं आप नहीं चाहते ना मच्छर ये खा जाती है बैट. ओके, यहाँ पर है बैट उल्लू तो नहीं कहीं. अच्छा परवीन जी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस देयर आर रियली नो ट्रू फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड. मैं भी कभी कभी सोचती हूँ अमीर अली राना कि दुनिया में एक्चुअली सच्चे दोस्त हैं नहीं. आपकी एक आधा साल किसी के साथ दोस्ती होगी समझ, फिर वो छुरा ज़रूर घूमेगा फिर, या 4-5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, या आपको 5-6 साल के बाद पता चलेगा कि वो कितनी चुगलियाँ कर रहा है. कहते दे आर नो ट्रू फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड, दे आर हियर बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू. वंस दैट नीड इज फुलफिल्ड देयर ट्रू कलर्स कम आउट. वो कहते हैं आपके साथ ज़रूरत के लिए जुड़े हुए हैं, आपके ज़रिए उनको कुछ मिलता है, ठीक है, कहते हैं, लेकिन जब उनका मकसद पूरा हो जाता है वो छोड़ देते हैं. थैंक यू अमीर अली. लखबीर कहते हैं कि परवीन जी, फ्राइडे यू प्लेड अ सॉन्ग फ्रॉम मूवी गाइड, दम लेले, एस डी बर्मन, हर्ड आफ्टर सो लॉन्ग एंड बिलीव इट, रिप्लेड इट मैनी टाइम्स, ऑल वी कैन हैव टू वॉच द मूवी. एस डी बर्मन का गाना, अच्छा मैंने तो एक ही बार सुनाया था. और फिर समझ ये है कि हमारे रेडियो पर अगर कोई गाना चल जाए तो फिर हर रेडियो स्टेशन उसको बार बार, जब तक उसको थ्रेड बेयर ना कर दें वो छोड़ते नहीं है. सो इसी तरह हुआ होगा लखबीर. अच्छा एम एल विश्वकर्मा, आई हैड बीन इन बिजनेस टू गिव हैप्पीनेस ऑन लोन. ओ एम जी, नोबडी केम फॉरवर्ड सो फार टू रिटर्न द सेम. कहते मैंने दिया था कर्जा लोगों को टू गिव हैप्पीनेस. आई हैड बीन इन बिजनेस टू गिव हैप्पीनेस ऑन लोन, लेकिन कहते किसी ने वापस लौटाया ही नहीं. बिल्कुल एम एल विश्वकर्मा. रितु गुप्ता को हैव अ ब्लेस्ड डे, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस एम एल विश्वकर्मा की पूरी परिवार की जानिब से, उनकी बीवी साहिबा भी हैं.
1: अरविंद जी सबको बहुत बहुत नमस्कार. जब समझ में आ जाए कि तुम गलत ट्रेन में हो तो पहले स्टेशन में उतर जाओ, क्योंकि वापसी की कीमत हर अगले स्टेशन के साथ बढ़ती जाती है. शुभ प्रभात. और रितु गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई. भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें.
0: मिशन सर्वे से बात हो जाती है. हेलो
2: प्रवीण जी, बैट को चामचिड़िक कहते हैं.
0: चामचिड़िक, अच्छा अच्छा ओके.
2: और दूसरा रितु गुप्ता को हमारे दोनों की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे.
0: हाँ, तो वो उल्लू क्या होता है?
2: उल्लू तो
0: आउल होता है. आउल, हाँ आउल. ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. कृष्ण सर हुए थे लाइन पर. और चामचिड़िक ये कहते हैं, मंजुला विश्वकर्मा के बाद कौन आई हैं? यहाँ पर एक मैसेज जो आया है वो सुना दें आपको.
3: परिन जी आप ठीक हो? परिन जी हमारी दोस्ती तो फायदे की है, क्योंकि हम हमेशा दोस्ती रहेंगे और बहुत सालों से हम दोस्त हैं और कभी हमारी दोस्ती नहीं खत्म होगी. परिन जी मैं हमेशा आपके लिए बहुत बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ तब भी, और हमेशा हमारी तो वफाई की दोस्ती है. बेवफा की नहीं है परिन जी, अपना ख्याल रखना।
0: क्या बात है, आपने कहा आप मेरी सच्ची दोस्त हैं। क्यों कहती हैं, आपकी आवाज सुन के मेरा इतना दिल खुश होता है। क्या बात है हुस्ना मोहम्मद, आई कैन फील इट, आई कैन हियर इट। बहुत अच्छे, सच्ची, वो कहते हैं हम सच्चे दोस्त हैं और इतने बरसों से। अच्छा, अब यहाँ पर कौन है जिन्होंने मिस्टर शाह लिखा हुआ है? मिस्टर शाह कौन है? कहते हैं टुडे इज माई इज अ बेस्ट फ्रेंड्स डे, आई विश बेस्ट विशेज फॉर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स रमेश हरिया। क्या बात है, रमेश हरिया उनके बेस्ट फ्रेंड है। ही इज अ जेम ऑफ अ मैन, ये तो मैंने सामने देखा है। समिन, आप पूछे अजय पाल से कि रमेश हरिया कैसे शख्स हैं, कैसी शख्स है। गॉड ब्लेस हिम विद हेल्थी लॉन्ग लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड रमेश हरिया फ्रॉम महेश शाह इन कीसी। उफ रमेश हरिया, आपको तो फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहिए जी हाँ महेश के लिए। रमेश, महेश कमाल के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कुछ और भी हैं समिन बेस्ट फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर के बाद, पहले ये सुन लेते हैं।

0: सर बेमिसाल अंदाज लिसनर्स की एक चैट भी है, चैट भर गई है रितु गुप्ता रितु गुप्ता रितु गुप्ता से हैप्पी बर्थडे है। इतने दिल से लोग इनको विश कर रहे हैं, इंडिया से बिंदु ने भी किया है, चिराग पटेल ने, यहाँ से शिवानी ने, मंजुला गुरसिया ने, सोनल मोदा ने, सभी ने, मिसिस धंजल ने, मिस्टर एमएल विश्वकर्मा, सभी ने रितु गुप्ता को इतनी बधाई दी है, खुदा उनको लंबी उम्र दे। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड को लेकर रनेजा नायर ने जब कॉल किया तो मैंने कहा रनेजा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? कहती हैं वैसे मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में बेस्ट फ्रेंड की बहुत ज़रूरत होती है आजकल, लेकिन कहती हैं कि बहुत कम लोगों को बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं। ये तो बात सही है। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से आपको बेस्ट फ्रेंड मिले। कहती हैं कि मेरी है बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने कहा नाम? कहने लगी कि मैं कभी ऑन एयर उनका नाम नहीं कहूँगी, लेकिन वो सच्ची दोस्त है, दुख सुख में आपका साथ देने वाली, लेकिन कभी मैं नाम नहीं। कहते हर एक को पता है हमारी कितनी गहरी दोस्ती है। तो कहते वो तो है, ठीक है, लेकिन कहते अगर मैंने नाम बताया, कहते हैं कि दोस्तियां तोड़ने वाले बड़े बैठे हुए हैं। एक मिनट मैंने उनका नाम कह लिया, बस दोस्ती फूंकने के लिए आ जाएंगे। ये बात सही है, समझ। अगर किसी की किसी के साथ बहुत अच्छी बने, हमने सामने से देखा है, कोई तीसरा फर्द आता है उस पर इतनी फेवर्स करके, घर बुला के, दावतें देकर उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और फिर वो उनकी जो ओरिजिनल फ्रेंड है उनके साथ दरार आ जाती है। तो ये देखा है बिल्कुल रनेजा नायर। तो रनेजा कहती है एक्चुअली तो बेस्ट फ्रेंड आपकी बेटियाँ होती हैं। कहते हैं माशाल्लाह हमारी दो बेटियां, कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और रनेजा आपने कहा है कि रितु गुप्ता को मेरी जानिब से मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: ईस्ट एफएम सेलिब्रेटिंग योर फेवरेट ओकेजन। ईस्ट एफएम केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स। ऑल द ग्रेट सॉन्ग्स दैट मेक योर डे।

0: आपको भी खुशियां दे। अच्छा चमगादड़ है मंजुला विश्वकर्मा ने, चमगिद्दड़ के चमगादड़ कुछ इस तरह से है पर है चमगादड़, और वो कहा है मंजुला विश्वकर्मा ने इंडिया से। अमीर अली राणा प्रवीण जी विशिंग हैप्पी बर्थडे टू रितु गुप्ता मेशिया मेनी मेनी मोर एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। रसिला प्रवीण जी ट्रू प्रोग्रेस इज ऑलवेज एन इनसाइड जॉब, वंस यू कमिट टू योर ओन क्लियर प्लान एक्सटर्नल ओपिनियंस फेड इन टू द बैकग्राउंड। कहते हैं जब भी कामयाबी होती है ना, ट्रू प्रोग्रेस जब भी तरक्की होती है वो आपके अंदर से आती है, फिर बाहर के जो एतराज़ात हैं उनका कोई उनके मायने नहीं होते हैं। प्रायोरिटाइज द इंटरनल सेंस ऑफ राइटनेस एंड कमिटमेंट टू योर वेल डिफाइंड गोल्स। कहते हैं अपना लक्ष्य तैयार कर ले, जो आपका मकसद है ना जिंदगी में उसको बयान करें, उसको सामने रखें और उसको पूरा करें। बहुत अच्छे रसीला, प्यार अली भाटिया।
1: प्रवीण जी मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ये गाना फिल्म प्यार का सागर का है, 1961 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, जिसको प्रेम धवन ने लिखा है और जिसकी धुन रवि ने बनाई है। ये गाना राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पे फिल्माया गया है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। प्रवीण जी मेरे दुश्मन मेरे दोस्त, ये गाना फिल्म आए दिन बहार का है, जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, जिसको आनंद बख्शी ने लिखा है और जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने बनाई है। ये गाना धर्मेंद्र
0: जी आपको ज़रूर बहुत पसंद आया है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफ़ी साहब के बेस्ट गानों में ये भी शामिल है। प्यार अली भाटिया शुक्रिया आपका। वेरी हैप्पी बर्थडे टू रितु गुप्ता फ्रॉम किसुमु मुनीर की जानिब से, बहुत शुक्रिया। बिंदु इंडिया से रितु जी का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, रितु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चंद्रिका वसंत गोसाई आप गाने बहुत इंजॉय कर रही हैं। यासर, अच्छा यासर हमें बताते हैं कि आज तारीख में क्या हुआ था। ओके पहले उन्होंने सलाम अर्ज किया है और फिर रितु गुप्ता को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स फ्रॉम रियासर। कहते हैं इन 1976 प्रेसिडेंट जोमो केन्याटा फॉर्मली ओपन द सेकेंड सेशन ऑफ केन्यास थर्ड पार्लियामेंट। कहते तीसरी पार्लियामेंट का जो दूसरा सेशन था वो खुला था आज के दिन 1976 में, हमारे सदर जोमो केन्याटा थे। इन 1974 डॉली पार्टन reached number one on the country chart with I Will Always Love You. I mean Dolly Parton, सबने सुना है उनको, हर सारी जो आज alive है ना समय, वो country singer थी, कमाल की थी। I Will Always Love You इनका बहुत कामयाब गाना था। ये कहते हैं 1974 में Dolly Parton number one पर थी। In Bollywood it's birthday of Dimple Kapadia who is 69. डिम्पल कपाडिया को 70 साल के होने के लिए एक साल बाकी है। और शिल्पा शेट्टी इज 51, दोनों हेल्दी हैं, पर शिल्पा शेट्टी मुझे नहीं पता कैसे वो मेंटेन कर रही हैं एट 51 अपनी लुक्स और अपने जिस्म को। थैंक यू यासर। मनहर हैप्पी बर्थडे टू रितु गुप्ता, मनहर और दक्षा की जानिब से। देखो रितु गुप्ता की तो आती जा रहे हैं। मीरा की जानिब से, अच्छा मीरा ये जो अगर आपने भेजा है कुछ पढ़ने के लिए, बहुत छोटा फॉन्ट है, आपको ज़रा बढ़ा के अपना टाइप करते। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स फ्रॉम मीरा, वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, आज तो ना बहुत दुआएं हैं, एक भी कबूल हो गई तो बन गया दिन। सना काना ने तो पूरा केक भेजा है विद स्ट्रॉबेरीज ऑन इट, नहीं चेरीज हैं एंड चॉकलेट। क्या बात है सना, थैंक यू फॉर रितु गुप्ता। हेलो परवीन जी, आज मेरा भी बर्थडे है, अरुणा टेलर। अल्लाह बहुत बहुत अरुणा टेलर को बधाई हो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अरुणा, हमारी जानिब से पूरी टीम की जानिब से। अच्छा फिर आते हैं कौन, कहते आई हैव सीन सम पीपल हगिंग ईच अदर शोइंग सो मच लव एंड द मोमेंट वन गोज अवे देर इज सो मच गॉसिप अबाउट द पर्सन हु गोज अवे। कहते हैं शुड दिस बी कॉल

called show of friendship. अच्छा, एक्चुअली कल्पना ये बात सही है कि आपको सामने इतनी गर्म जोशी से आपको हग करेंगे, लेकिन वो दिल से आपको चाहते नहीं, चाहे आपकी बात करें ना करें, बाद में आपकी पीठ पीछे बात करें ना करें, लेकिन वो दिल से आपको चाहते ही नहीं है, लेकिन उनको बनावट की इतनी आदत हो गई है कि वो गर्म जोशी से आपको करते हैं, आपके गालों पर लिपस्टिक के मार्क्स छोड़ जाते हैं, लेकिन दिल से वो बिल्कुल आपको नहीं पसंद करते. सो कल्पना, आई एग्री विद यू. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू रितु. कहाँ से आया है? रूपल ने. लॉट्स ऑफ गुड विशेस प्रवीण जी. बेस्ट फ्रेंड्स आर फॉर ओनली कन्वीनियंस. सॉरी बट रियली जेन्युइन फ्रेंडशिप इज रेयर. कहा बिल्कुल आपने सही है कि सच्ची दोस्ती तो है ही नहीं. वाह क्या बात है. सब ने रिकग्नाइज कर, भावेनी पटेल ने जो कहना है थोड़ी देर के बाद.

और समीन आपको पता है कि हेरिटेज साइट क्या होती है. हर मुल्क में इतिहासिक बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, मकामात होते हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं. तो ज़मीन एक मुझे आपने बताना है ये कौन सी बड़ी हेरिटेज साइट पर जो इंडिया में है वहाँ के पानी के टैंक में बंदर दिख रहे हैं और वीडियो किसी ने बनाई है, वायरल हो गई है. बंदर एक दूसरे पे इस वाटर टैंक में पानी फेंक रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं. कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी है इन जानवरों के लिए, पूल पार्टी, लुत्फ ले रहे हैं. मगर इतने ज़्यादा भारतीयों ने निंदा की है कि इतना मशहूर मकाम है और जानवरों को खेलने दिया जा रहा है. समझिए कौन सा मशहूर मकाम है जहां ये बंदर खेल रहे हैं. ये कल ही हुई है जारी वीडियो, तो ट्राई फाइंड आउट करें, बताएं मुझे और हम रीतू को ये डेडिकेट कर दें.

0: जी, जिनके लिए हमने ये गाना सुनाया है उनकी आवाज सुने।
1: परवीन जी नमस्कार, मैं आपको एक दोस्ती पे बोल रही हूँ। परवीन जी, जो दोस्ती होती है ना, वो बचपन की ही दोस्ती सच्ची होती है। वो देखो, हम इंडिया में छोड़ आए, लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियां ससुराल में चली जाती हैं, कोई कहीं चली जाती, कोई कहीं चली जाती है, ठीक है, यादें रह जाती हैं। लेकिन अभी तो हम सोचते हैं कि अभी आप FM जब से हमने सुनना शुरू किया है, तो हमारी तो बेस्ट फ्रेंड सभी की, प्रवीण आदम और हम सभी लिसनर आपस में सभी फ्रेंड है, जो सभी लिसनर को हमने देखा नहीं, लेकिन पेन फ्रेंड चलता था ना हमारे टाइम, हम तो सोचते हैं वही पेन फ्रेंड है। जो लोग आजकल, पेन का जमाना नहीं रहा, आजकल व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, तो FM में सभी तो फ्रेंड्स हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बस हम सभी एक दूसरे के ऐसे ही आपस में खुशियां बांटते रहें। और मैं तो प्रवीण आदम को तो मैं तो हमेशा ही अपनी फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन वो चाहे माने ना वो तो उनको इनवाइट करो तब भी पता नहीं, जरूर दूर लगता है उनको आने के लिए। हम तो आपसे सब बातें शेयर भी कर लेते हैं प्रवीण जी, और दोस्ती पे क्या बोल सकते हैं, हम तो यही बोलते हैं, अब हम सभी एक दूसरे के फ्रेंड हैं और एक दूसरे के फ्रेंड बने रहे। रितु गुप्ता।
0: नहीं, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ रितु गुप्ता, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मेरी दोस्त हैं, बहुत मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि अच्छे सच्चे लोग, जो मुखलिस लोग हैं, समझ, जेन्युइन, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और हमें मुश्किल से रितु गुप्ता मिली है।
2: हेलो, नमस्कार, मनर पटेल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण। एक लड़का और उसका फादर लड़के के लिए लड़की ढूंढने को जाते हैं, तो एक वो लोग को कांटेक्ट मिला, पर लड़की वाले बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले। तो लड़के का बाप ने बोला कि उधर जाके तेरे को बोले कि मोटरसाइकिल दहेज में देगा, तो बोलना नहीं, फोर व्हील चाहिए, और फोर व्हील दे तो कुछ और भी मांगना। फिर नक्की करके वो लोग गए लड़की के घर पे, फिर चाय नाश्ता किया, बातें की, फिर लड़के ने बोला लड़की को, तो तुम लोग मुझे क्या शादी के बाद देंगे? तो लड़की ने बोला, मेरे फादर को बोलना लैंड क्रूजर, पगाड़ो, कोई भी गाड़ी फोर व्हील तेरे को देगा। तो लड़का बोलता है, नहीं, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे को चाहिए 10 सीटर एयरक्राफ्ट। तो लड़की बोली, हाँ वो दे सकता है, लेकिन तेरे बाप को बोल एयरपोर्ट ट्रिप बनाए अप टू तेरे घर तक, तो मेरा फादर पायलट लेके आ जाएंगे, एयरक्राफ्ट लेके। थैंक यू, मनोहर पटेल, किसुमु।
0: हवाई अड्डा तो पहले बना लो, ये बड़ा अच्छा जवाब था। और लड़का भी देखो लालची, कैसे रास्ते में ही उसने सोच लिया कि लैंड क्रूजर नहीं चलेगी, कोई छोटा सा हवाई जहाज है, 8 सीटर हुआ, 10 सीटर हुआ।
3: दिस इज ईस्ट FM, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स, Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. Asian Mix.
4: It's 11:26.
5: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है, खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
6: But this Father's Day, let's celebrate Dad! What would happen if you gave him an apron and a spoon?
7: Let's find out in the biggest annual cooking battle, the East FM Koroga with Dad edition on 21st June.
8: It's simple. Form a team with your father and his friends, create a cool team name and psych song, and register with us.
9: It will be a day filled with food, fun, and fabulous prizes to win. Register by calling or sending us a WhatsApp message on 0701 106 106. Team registration is at 10,000 Kenya shillings. East FM Koroga with Dad. This 21st of June, it will be unforgettable.
3: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
10: Ajala Mobile is selecting professional listeners. If you're mature, trusted, and able to listen without judgment, this is a paid opportunity for you. Visit myjobsinkenya.com to apply.
11: Our client in the manufacturing industry is seeking to recruit a production technician. A technical certificate or diploma in mechanical, electrical, or industrial engineering, or diploma in technology is highly desirable. And 1 to 2 years of experience working as a machine operator within a manufacturing, assembly, or industrial processing environment is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews. More of Kenya's premier Asian mix. East FM.

0: और सबसे पहले जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा करेक्ट आंसर और वो हैं कल्पना कुलकर्णी. अच्छा कल्पना टंग ट्विस्टर है कुलकर्णी. कल्पना वेल डन. और आज सेकंड कॉलर हैं चिराग पटेल करटीना से, सना काना, सोनल मोदा, दीपक वडगामा. मिसेस गौतमा कहती हैं कल मुझे इत्तफाक हुआ रितु गुप्ता से मिलने का. मैं उसको पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स. ये मिसेस गौतमा ने लिखा है. आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग, शी इज़ अ लेडी ऑफ वेरी प्लेजेंट डिस्पोजिशन. कहती है बड़ी खुश और मिलनसार हैं रितु गुप्ता. देखा मैं कहती थी ना कि बड़ी अच्छी मुखलिस हैं महिला. और मुनीर, द प्लेस यू आर लाइकली थिंकिंग ऑफ इज गलता जी टेम्पल, नो. अमीर अली राना, नो. और मुनीर, नो. जबीन हिरानी, लाइफ इज सो आयरोनिक, इट टेक्स सैडनेस टू नो वॉट हैप्पीनेस इज, नॉइज टू अप्रिशिएट साइलेंस एंड एब्सेंस टू वैल्यू प्रेजेंस. बहुत खूब जबीन हिरानी. और अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, ओ माय गॉड रमेश हरिया रिमेंबर्स माय बर्थडे, लास्ट ईयर वाज द बेस्ट बर्थडे आई एवर हैड बिकॉज ऑफ योर लिसनर्स एंड ऑफ कोर्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड बेमिसाल अंदाज. अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, वेरी गुड यार. रमेश हरिया बड़े होशियार हैं. अच्छा जे बनावरा आपने करेक्ट आंसर दिया है. और मंजुला विश्वकर्मा ने क्या कहा है,
1: अरविंद जी अरुणा टेलर जी को भी हैप्पी बर्थडे और भगवान उन्हें खूब सारी खुशियां और लंबी जिंदगी दे.
0: अरुणा टेलर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स हमारे सारे तमाम प्रेजेंटर्स की जानिब से. अभी मंजुला विश्वकर्मा ने आपको विश किया है फ्रॉम इंडिया.
2: आदाब परवीन जी, आज फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती निभाने वाले सभी दोस्तों और बेमिसाल के सभी श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहता हूँ. जरा गौर से सुनिएगा. जिंदगी में हजारों अजनबी से मुलाकात होती है, जिंदगी में हजारों अजनबी से मुलाकात होती है, जाने अनजाने चेहरों की पहचान होती है. अपने ना होते हुए भी अपने हो जाते हैं, मिलो दूर रहते हुए भी दिल के करीब हो जाते हैं. मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आज जैसे मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे प्यारे दोस्तों का साथ मिला. दोस्तों का लिस्ट तो बहुत लंबा है, सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर से सभी दोस्तों के लिए दुआ मांगता हूँ कि आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहे और ऐसे ही साथ निभाते रहे. रमेश हरिया.
0: और हमें पता चल गया है रमेश हरिया ने कहा है कि अरुणा टेलर की आज बर्थडे है, तो उनका भी नाम अगले साल हम उनकी भी बर्थडे मनाएंगे, आज भी मना रहे हैं. दिस इज फॉर रितु गुप्ता. सलीम मेहर ने इतना खूबसूरत बना के गुलदस्ता भेजा है रितु गुप्ता के लिए. सलीम मेहर, आई विल सेंड अ वॉइस मैसेज एज वेल.
3: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी. सलीम मेहर फ्रॉम लंदन. गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर लवली बेमिसाल लिसनर्स. प्रवीण जी, आई हैव जस्ट सेंट यू अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू प्लीज पास देम टू रितु जी for a lovely birthday. May Allah give her many, many more healthy ones to follow. Have a lovely day, Ritu ji.
0: Bahut meherbani, dil se message, Salim Meher ka for Ritu Gupta. Ye baat hai, samjhe ki dekhe hum kitne kareeb ho gaye awaaz ki duniya mein, ek dusre ko sunte sunte. Shahzadi Saiba, what a beautiful song of Lata Ji. The lyrics and the composition, aapne kaha hai Shabbir Ahmed. Bahut achhe enjoy kijiye. Ye bhi aapko aap enjoy kare, thoda serious song hai.

0: और आंसर क्या था? आंसर आज ताज महल है. समझ, ताज महल में एक पानी का टैंक है जिसमें बंदर समिन खेल रहे हैं. आप मुझे बताएं, इतनी मशहूर आपकी हेरिटेज साइट है समिन, उसमें इस तरह से लापरवाही से जानवरों के लिए आप तालाब बना सकते हैं कहीं और, लेकिन ये तो गलत है.
1: प्रवीण जी, दो दिन की जिंदगी में दुख रहे बे, ये गाना फिल्म पूनम का है, 1952 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, जिसको शैलेंद्र ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई है. वो ये कामिनी कौशल पे फिल्माया गया है, उसके साथ अशोक कुमार भी ये मूवी में काम कर रहे थे. मूवी भी अच्छी है, उसके सब गाने भी अच्छे हैं, ये गाना भी अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: अच्छा, कामिनी कौशल हो और अशोक, दोनों बहुत ही मंजे हुए अदाकार थे. और दो दिन की जिंदगी में अमेजिंग सॉन्ग. रूपल, आई एग्री विद यू, द फिल्म वाज पूनम. अच्छा, बिल्कुल, अभी मेरे ख्याल से वो कह कर गए. अमीर अली राम, प्रवीण जी, आई हैव अ सजेशन. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली है ना बेमिसाल अंदाज की, वी शुड मीट एट अ वेन्यू इन द सिटी. ऑब्वियसली इट विल बी अ डच, वी कुड गो डच एंड वी कुड कम टू नो ईच अदर एंड देन यू एज द गेस्ट ऑफ ऑनर. अमीर अली राना, हमने ये कोशिश की थी लेकिन ना फुल गैदरिंग करना इतना मुश्किल था. लिसनर्स के अपने अपने प्रोग्राम होते थे वीकेंड, जब हम सैटरडे को ट्राई करते थे तो वो समहाउ हुआ नहीं. फिर रमेश हरिया ने बड़ी कोशिश की और अब वो क्या कहते हैं इसके बारे में, रमेश हरिया और अमीर अली राना दोनों मिलकर कोई प्रोग्राम बनाएं, कर सकते हैं हम, इट इज़ पॉसिबल. सिर्फ ये थोड़ी कमिटमेंट चाहिए और ज़रूरी नहीं कि हम मेरे बारे में ही बात करें. लेकिन हरीश वरसानी ने सबको गुड मॉर्निंग कहा है, मुझे भी. चलिए हरीश, आप विश करेंगे अरुणा टेलर को भी और रितु गुप्ता को भी हैप्पी बर्थडे, वो कर लीजिएगा.

0: चलिए जितेंद्र से माफी मांगते हैं क्योंकि काफी देर पहले उन्होंने भेजा था ये मैसेज जो मैंने नहीं सुनाया, अब सुनाती हूँ।
1: हेलो प्रवीण जी, मैं और पता लग गया कि आज फ्रेंडशिप डे है।

0: चलिए जितेंद्र से माफी मांगते हैं क्योंकि काफी देर पहले उन्होंने भेजा था ये मैसेज जो मैंने नहीं सुनाया, अब सुनाती हूँ।
1: हेलो प्रवीण जी, मैं और पता लगे कि आज फ्रेंडशिप डे आ, सो मेरी फ्रेंड ता प्रवीण जी है, मेहरबान प्यारी प्यारी प्रवीण जी जो बेमिसाल ते सुन लगी है मेरी फ्रेंडशिप उदो दी है, जो गल होंगी है मैं ये शेयर कर दी है, सो फ्रेंड दे नाल शेयर जो करे वही फ्रेंड हुंदा वा, सो अपनी दोनों दी फ्रेंडशिप हैगी है। थैंक यू जी।
0: बिल्कुल यकीनी, मैं तस्दीक करती हूँ कि ये फ्रेंडशिप है और रहेगी। थैंक यू सो मच जतिंदर। और एक मैसेज जो अभी
2: प्रवीण जी,
0: चंद मिनट
2: आज लकीली बेस्ट फ्रेंड्स डे है और रितु गुप्ता जी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं उनका हैप्पी बर्थडे भी है, सो मैं उनके लिए विश करती हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों पचास हजार।

0: May God bless you with good health to enjoy many, many more with us. Thank you, Rekha Walia.
1: अच्छा रेखा, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है, तो शुक्र है कि मैंने आपका मैसेज सुना दिया, वरना गलत फहमी हो सकती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अभी तक मुझे विश नहीं किया। ये तो मेरा ही कसूर है कि सुन, कई बार इतने मैसेजेस हो जाते हैं आगे फिर ब्रेक आ जाती है ना। और आज तो एक से बढ़कर एक गाना है, क्या बात है रूपल। अगर आप इंजॉय कर रही हैं तो अच्छे गाने हैं। और यहाँ पर हैं कौन?
2: सलाम और आदाब शहजादी साहिब और सबको। शहजादी साहिब, आज रितु जी की भी सालगिरह है और अरुणा जी की भी। यू नो, मे द ऑलमाइटी ब्लेस देम विद गुड हेल्थ, ये कह सकता हूँ। और रमेश अरिया ने अभी जो छोटी सी एक वो पढ़ी है, माशाल्लाह ब्यूटीफुली ऑन फ्रेंडशिप, क्या बात है। गॉड ब्लेस यू।
1: शबीर अहमद, आप नहीं विश करते कि हम कहीं किसी तरह करीब करीब होते तो हर एक की बर्थडे पर हर एक को आना ही पड़ता और हम इकट्ठे होकर उनका दिन बनाते। अब देखें, एक तो ट्रैफिक का मसला, एक तो जगह है, इतना डिस्टेंस है, कोई एक कॉन्टिनेंट में है, कोई इंडिया में है, कोई केन्या में है, कोई इंग्लैंड है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप बताएं कितनी मुश्किल ही नामुमकिन ही है, वरना तो कितना अच्छा होता, हम इतना एंजॉय करते एक एक की साल।
3: रवीन जी, छोटी सी ये जिंदगानी, ये गाना फिल्म आहा का है, 1952 की मूवी है, जिसको मुकेश ने गाया है और शैलेंद्र ने लिखा है, शंकर जय किशन ने उसकी धुन बनाई है। और ये गाना फिल्म में मुकेश पे फिल्माया गया है और ये मूवी में राज कपूर भी थे। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
1: और मंजुला विश्वकर्मा ने भी कुछ कहा है।
4: प्रवीण जी, आप जो पूछ रही हैं कि बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना, लेकिन बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं और सबके साथ मेरी बहुत पटती है। हाँ, 3-4 फ्रेंड्स हैं जिनसे ज़्यादा गहरी दोस्ती है, उसमें से एक का नाम कविता है, जो मेरे स्कूल के साथ थी और कॉलेज में भी थी और अब तक है फ्रेंड, और 25-30 साल से वो मेरी फ्रेंड है। मैं जब रायपुर जाती हूँ तो उससे ज़रूर मिलती हूँ।
1: वाह क्या बात है, आप बहने रियली अच्छे, मुझे लगता है आपकी परवरिश आपके माँ बाप ने बड़ी अच्छी की है, दिल से चाहती हैं, दिल से रिश्ते निभाती हैं। और कविता बहुत अच्छी बात है, आप दोनों के लिए अगला गाना, दोनों के लिए। और किसी और, सत श्री अकाल, मैं हूं परमिंदर चाना, आज फ्रेंडशिप डे है तो हर लिसनर को कंग्रेचुलेशंस, एंड देन हैप्पी बर्थडे टू रितु और अरुणा टेलर को भी आज बहुत बहुत बधाई हो परमिंदर चाना की जानिब से। और रोशन कांजी, एंजॉइंग मंडे शो सो मच, चलिए अच्छी बात है आप इंजॉय कर रही हैं।
2: शहजादी साहिबा, बट वी आर सो वेरी लकी दैट थ्रू बेमिसाल और आप की मेहरबानी मेहरबानी में, यू नो वी आर टुगेदर, यू नो वी कैन लिसन टू ईच अदर, एक दूसरे को पैगाम पहुंचा सकते, और आप, यू आर द मेन सोर्स, यू नो, मे द ऑलमाइटी ब्लेस यू टू।
1: थैंक यू शबीर अहमद, वो है ना कि बस मेरा है, मैं वो कहते हैं कि दोस्त अच्छे मिल जाए, मुझे और कुछ ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और फिर जब प्रोग्राम शुरू किया तो के यही थी कि अच्छे लिसनर्स मिल जाएं, और वो भी मिल गए, खुदा ने हर दुआ कबूल की।
5: हेलो प्री जी, जी आप इकट्ठे होइए, अपनी जी फ्रेंडशिप है, इन्हों की अपनी वंडरफुल फ्रेंडशिप आ, सारी हवा दे विच घूमती आ, क्योंकि जब आप पार्टी करेंगे उन्नी की जगह च घूमेगी अपनी गल्लां बातां, हुण सारी वर्ल्ड दे विच अपनी सारे दी साउंड जांदी आ, वंडरफुल फ्रेंडशिप अपनी सारियां दी। थैंक यू जी।
1: वाकई जतिंदर, एयर वेव्स पर हैं हम, हवा में, फजा में हमारी बर्थडे ग्रीटिंग्स गूंजती हैं। नीला शेथ भी हैं हमारे साथ. नीला शेथ ने भी शायद करना है ग्रीट. और समिन वो जिस मिल मिल के बैठते तो मजा ही कुछ और था, है ना. हम गाने गाते मिल मिल के.

0: और समय आज का जो सवाल था एक्चुअली जो बड़ा सवाल था वो मेरा यही था, हालांकि फिर ताजमहल की बात हो गई, लेकिन समन जिन लोगों के पेसमेकर, वो हार्ट पेसमेकर होता है ना, जब हार्ट जरा सुस्ती से चल रहा हो तो फिर पेसमेकर लगाते हैं ताकि उसमें एक करंट जाती है, उससे हार्ट की जो धड़कन की जो जरा तेजी हो जाती है। जिन लोगों के पेसमेकर हो या कान में इम्प्लांट हो या दिमाग में मेटल लोहे के क्लिप्स लगाए गए हों, इनको, इन तमाम लोगों को कौन सा टेस्ट नहीं करवाना चाहिए? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये, वो टेस्ट है जिसे बहुत सेफ माना जाता है कि ये बड़ा अच्छा टेस्ट है, रेडिएशन इसमें इस्तेमाल नहीं होती, फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए इस टेस्ट के लिए। जिन्होंने अपने जिल्द पर टैटूज बनाए हों वो भी नहीं करने चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए ये। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों उनको भी नहीं जाना चाहिए इसके लिए। जिनको किडनी, गुर्दे उनके खराब हुए हों उनको भी इस टेस्ट से दूर रहना चाहिए। समझ, ये कौन सा टेस्ट है जो आपकी स्पाइन या जोड़े या अंदर के जो अंग हैं ऑर्गन्स की तस्वीर उतारता है, ये कौन सा टेस्ट है, इसको कहते क्या है? 07011106106
1: Your favorites from

0: आपको गर्मी नहीं लग रही है? इसे उतार दीजिए ना।
1: ठीक है।
0: जब मैं यूरोप में थी तो ज्यादा बातें करने वाले मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन यहाँ आकर न जाने मुझे खामोशी क्यों पसंद।

0: और सर मैंने आपसे पूछा था कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि अगर आपका कोई पेसमेकर है टैटूज हैं प्रेगनेंसी है कोई इम्प्लांट है कान में कोई दिमाग में क्लिप्स हैं तो आप नहीं करवा सकते। सबसे पहले जवाब देने वाले कृष्ण सर हुए शनाज बट फ्रॉम तंजानिया और कल्पना सोनल मोदा जबीन हिरानी ने अरुणा टेलर और रितु गुप्ता को हैप्पी बर्थडे कहा है और इसके साथ साथ अब चलते हैं टीना के पास। करेक्ट आंसर बिल्कुल चिराग पटेल बिल्कुल सही जवाब है आपका। दीपक वडगामा करेक्ट मतलब कि किसी ने रॉन्ग अभी तक नहीं दिया। दिनेश पोपट हाँ बिल्कुल करेक्ट और यहाँ पर अमीर अली राणा वेल डन। यहाँ आती हैं रूपल बिल्कुल सही रितु गुप्ता करेक्ट रमेश हरिया।
1: आदाब प्रवीण जी आज दूसरी बार कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि आज दोस्ती का जो जिक्र कर रहे हैं सब लोग तो रहा नहीं गया। वैसे सभी के जीवन में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका जिक्र भी करना जरूरी है। एक जो पहला है हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया और उनसे अच्छा दोस्त कोई हो भी नहीं सकता। दूसरा हमारे गुरु जी जिन्होंने हमें शिक्षा दी और जीने का तरीका सिखाया। तीसरा हमारा जीवन भर का साथी पति या पत्नी जिन्होंने सुख दुख में हमेशा साथ निभाया। चौथा एक ऐसा दोस्त जो दिल की पुकार बिना बोले सुन ले। सबके जीवन में ऐसे दोस्त होना जरूरी है। और अंत में हमारी प्यारी दुलारी सबकी शहजादी परवीन जी आप जिन्होंने हम सबको एक दौर में बांध रखा है और आपने गुरु जी और दोस्ती दोनों का रोल बड़ी बेखूबी से निभाया है। मुझे यकीन है कि सभी श्रोताओं को ये मंजूर होगा और अगर किसी के कोई और भी याद आ जाए कोई कैसा दोस्त होना चाहिए तो जरूर बताइएगा। शुक्रिया रमेश हरिया।
0: रमेश हरिया बहुत काबिल एतमाद हैं भरोसे के लायक। समय कुछ भी पूछना हो ना मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में आप सुन पा रहे हैं नहीं है लाउड है नहीं है क्लियर है तो मैं इनको कॉल करती हूँ। बहुत अच्छे रमेश हरिया जो आपने कहा है लेकिन पता है कि या मेरा जी चाहता था कि आप एक दूसरे से मिलें क्योंकि कई बार एक लिसनर मुझे पूछे कि फलां के बारे में वो कौन है वो कहाँ रहते हैं ये कौन है क्या करते हैं तो मैंने कहा कि क्यों ना एक दूसरे से मिला जाए क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए और फिर आकर जो है रमेश हरिया ने हमारी बहुत मदद की और हमने खोल लिया ये ग्रुप। अच्छा रसीला शाह आंसर वो दूसरा है जो दूसरा है डायग्नोस्टिक टूल। और रीना हैप्पी बर्थडे टू अरुणा टेलर टू रितु गुप्ता और आपने करेक्ट आंसर दिया है। आपको पता है कि मेरी माँ के पेसमेकर था मदर इन लॉ सास के तो लास्ट ईयर वो चल बसी 80 बरस की उम्र में। रीना हाँ खुदा उनको स्वर्ग में जगह दे। शब्बीर अहमद बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रॉम लंदन। अब जर्मनी से भी आंसर आ गया है गुड आफ्टरनून टू ऑल योर ब्यूटीफुल लवली लिसनर्स। ये उमर हैं पहले दुबई में थे अब जर्मनी में हैं। मंजुला विश्वकर्मा
2: अरविंद जी मुझे लगता है आप MRI की बात कर रही हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उसी की बात कर रही हैं जो कि काफ़ी सेफ है।
0: बिल्कुल सही MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के वो जो है मैग्नेट से चलता है और फिर उसकी इमेज आ जाती है तस्वीर पर, तो न जाने कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज रेजोनेंस जो है कि कोई आवाज़ हो समय उसको तस्वीर में बदल दिया जाए, बहुत सही है, ये आंसर हो गया। आगे मैं आपको अखबार के बारे में बताना है समय, आपने आज एक अखबार ख़रीदना है।

सम जबरदस्त अखबार है द स्टार, आप इसे पढ़ें क्योंकि इसकी जो कहानियां हैं आपको आकर्षक करेंगी। समझे, इसके जो आर्टिकल्स हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती है वो ताज़ा तरीन द स्टार में ही मिलती है। सियासी मजामीन, पॉलिटिकल जो होते हैं, इस तर्ज के भी आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। और तफरी यानी मनोरंजन की न्यूज, खेलों पर तबसरे हैं, लाइफस्टाइल पे रोशनी है, तमाम द स्टार में है। एक मकबूल अखबार है द स्टार .co.ke, आप जाकर देखें तो सही किस तरह के आर्टिकल्स हैं, किस मायार के हैं।

समझे, एक फल आपने केक तो बहुत खा लिए हैं, अब एक फल भी देख लें। ये कौन सा फल है कि 1950s का जमाना था, तो रशिया के लीडर आए, रूस के, रशिया के इंडिया आए, तो जनाब नेहरू ने इन्हें ये फल दिया कि टेस्ट दिस, यू लव इट। वो रशियन लीडर तो दीवाने बन गए इस फल के, कहते और भी दो, और भी भेजना, बाद में भी ज़रूर भेजना। तो कई बार जवाहरलाल नेहरू ने इनको ये फल भेजा। मुगलिया एक बादशाह ने अपने एक बाग में 1,00,000 पेड़ लगाए थे इस फल के, मुगल किंग ने, और बादशाह ने लिखा कि काबुल के फल की तो मशहूरी है, शोहरत है, काबुल का फल मशहूर है, पर इस फल का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, अमरीकी सदर भारत आते हैं, अमरीका के प्रेसिडेंट, तो मनमोहन सिंह उन्हें ये फल देते हैं। वो प्रेसिडेंट खा के इतने खुश होते हैं, कहते इट्स अ हेल ऑफ अ फ्रूट। और फिर क्या, अमरीका जाकर फल क्या चखा है, अपनी हार्ली डेविडसन जो बाइक्स थी, मोटर बाइक्स, इंडिया भेजना शुरू कर दी। सर फल का नाम क्या था, आप मुझे फल का नाम दें, मैं आपको प्रकाश कौर देती हूँ।

0: नीला शेट कहती है 12 बजे का आपको पैगाम भेजा हुआ है, ये क्या बात हुई? नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, मैंने उनका आंसर पढ़ दिया था और मैसेज भी, लेकिन ये।
1: हेलो परवीन जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज जो फ्रेंडशिप डे है, तो मैं एक फ्रेंड नहीं है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है। देखो, एक तो बेमिसाल अंदाज के परिवार के सभी सदस्य मेरे मित्र है, दूसरा आप उसमें से वन ऑफ द मेन है, और मेरे मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे फ्रेंड हमको मिले हैं, कि जो हमको हर रोज एंटरटेन करते हैं, इससे ज़्यादा कौन से फ्रेंड हो सकते हैं। और सच्ची बोलूँ ना तो मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि मैं एक का नाम नहीं ले सकती हूँ। इंडिया में है अलग, यहाँ है, कनाडा में है, सब जगह है, तो मैं एक का नाम नहीं दूंगी। आप सभी मेरे फ्रेंड हैं, मैं आपको फ्रेंड मानती हूँ, आप मानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर सच्ची मैं आपको विश करती हूँ और रितु जी को हैप्पी बर्थडे भी विश करती हूँ साथ में। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय बेमिसाल अंदाज परिवार, थैंक यू सो मच नीला शेख
0: जी, बेस्ट फ्रेंड डे था एक्चुअली। और शबीर अहमद, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, सही जवाब आपका। और शीला और शैलेश, बहुत मेहरबानी आपकी। सोनल मोदा, करेक्ट आंसर। लखबीर, करेक्ट आंसर। जमीन, और आंसर था क्या? मुझे लगता है यहाँ पर होगा आंसर।
2: अरविंद जी, ये तो मुझे लगता है कि अल्फांसो है, जो आम की एक किस्म है, जो कि बहुत फेमस है और सबको बहुत पसंद है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आम मिल जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मुझे लगता है यही होगा आंसर।
0: मंजुला, ये अल्फोंसो ही होगा जो उन्होंने दिया था, बहुत फेमस है ये आपका इंडिया का, और इंग्लैंड में एक दफ़ा मैंने खाया था अल्फोंसो, पूरी क्रेट लेकर उन्होंने दी जिनके घर थे, हम कहने लगे कि ये बहुत भारत का, जब तक मौसम ना हो आप नहीं खा सकते, और आजकल यहाँ है तो खाएं। वाकई इतना अच्छा लगा कि अपने देश का वहाँ उस मिट्टी में उगा हुआ फल हो, बहुत अच्छा लगा। और नूनी किसुमु से, बिल्कुल आम, आम का आंसर था जमीन आज।
3: East FM, Kenya's premier Asian mix. The spicy spot on the Kenyan premier Asian mix.
4: Lights, glamour, beauty and creativity. Kenya Brahm Sabha presents Bridal and Groom Hair and Makeup Competition Season 2 on Saturday, 13th June 2026 from 6:30 p.m. at the Kenya Brahm Sabha Hall, 3rd Parklands. Enjoy stunning makeovers, live entertainment, dinner, DJ party, raffle draw and games. Tickets, Kenya shillings, 1,000. Register now, 0721-974-444.

0: This combination of Manisha Koirala and Madhuri Dixit, it's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. It's exactly 2 p.m. We're getting into the next hour of the show. Thank you for sharing your memories with your friend. Rasila is saying thank you. You are my dearest friend and you've been so special and many special moments with you on radio. Be blessed. Well, thank you so much, Rasila, for always being there in my journey. Almost this is the 8th or the 9th year actually at East FM, and you've been tuning in my shows, whether it's weekends, weekdays, evening, morning, afternoon. So I truly appreciate your love and support as well. I've got another message here. You haven't mentioned your name. You're saying still not over the day. We did absolutely nothing but still made it iconic. We really turned the simplest days into the core memories, and that's for my best friend. Okay, you haven't mentioned your name or your best friend's name, but I hope she or he is listening. Okay, thank you so much for that. It's all about Dil Se Keh Do on Retro 2 right now with Niloufar on East FM.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: ईस्ट एफएम पे सोमवार की खबरें, पहले खबरों की सुर्खियां। रिगाथी गशागवा की इंपीचमेंट पे फैसला आज, पहले के चीफ जस्टिस मरागा गिरफ्तार। बोको हराम के कब्जे से 360 आजाद, यूएई में रहने वाले भारतीयों को मदद करने की मांग। खबरें तफसील से। मिलीमानी लॉ कोर्ट्स के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पहले के वाइस प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के मुकदमे पर हुक्म जारी किया जा रहा है। सियासी मंजर पर गशागवा के केस का फैसला गहरा असर छोड़ेगा। केन्या के साबिक चीफ जस्टिस डेविड मरागा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब आप एहतजाज में शरीक थे। नैरोबी नेशनल पार्क की 75 एकड़ जमीन पर गाड़ियों का पार्किंग लॉट बनाने के खिलाफ मरागा कई साथियों के साथ जुलूस में शामिल थे कि पुलिस ने इनको रोक दिया। एंटी रायट पुलिस को रवाना कर दिया गया मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के एहतजाज को रोकने के लिए। तलबा पे आंसू गैस छोड़ा गया। तलबा की इम्तहान के पेपर्स को लेकर शिकायतें हैं जो कोई सुन नहीं रहा। आलमी खबरें। नाइजीरिया की बोको हराम तंजीम के अगवा करदा 360 शहरियों को रिहा कर लिया गया है। बोर्नियो राज्य में नाइजीरियन फौज ने खास कार्रवाई में पहाड़ी इलाके में छुपाई गई महिलाओं और बच्चों को इस्लामी मिलिटेंट्स के शिकंजे से आज़ाद करवा लिया। 2014 में बोको हराम ने 200 स्कूल की लड़कियों को अगवा किया था, जिनमें 90 आज भी लापता हैं। केरला के मुख्यमंत्री ने सरकार से मांग की है कि यूएई में रहने वाले भारतीय परिवारों की मदद की जाए। सथीसन वीडी के मुताबिक इंडिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रोजगार छिन गया है, दुबई के इरानियन हॉस्पिटल के बंद किए जाने के बाद। केंद्र को चाहिए कि यूएई के हुकाम से इस मुद्दे पर बातचीत करें। मलयाली परिवारों का गुजारा मुश्किल हो रहा है। राजस्थान की एक औरत ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि उनके शौहर ने कुवैत से 3 तलाकें उन्हें भेज दी हैं व्हाट्सएप पर। भारत में यह कानून के खिलाफ वर्जी है। पुलिस आशिक इकबाल को नोटिस भेजकर भारत तलब करेगी। औरत के 2 बच्चे हैं जिनकी कफालत वो खुद करती है। यूरोप की फिजा में टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हुई है। साइंसदानों का कहना है कि रशिया के सैटेलाइट्स यूरोप भर में जीपीएस के सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये सिस्टम करोड़ों को खतरे में डाल सकता है। रशियन जीपीएस के सिग्नल्स को जैम करके हवाई और बहरी जहाज़ों पर असर कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और उनकी बाअसर बहन किम यो जोंग ने वाजे ऐलान किया है कि मुल्क का जौहरी प्रोग्राम और एटमी ताकत पर किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। शुमाली कोरिया अपनी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थी आज की खबरें। मैं हूं परवीना।
1: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
0: Absolutely. This is all about retro to right now. I was actually waiting for these drums to start. You know, this drumming in this song is what makes this song so amazing. And yes, it is going out for the Best Friends Day that we are celebrating on Retro to Right Now with Nilufer on East FM, Kenya's Premier Asian Mix. It's in the vocals of Mohan Kannan and Shilpa Rao. What a tune. It's all about dosti. It's all about friendship. It's all about yariyan, which actually matters a lot in life. Koi kuch kare na kare, dost aapke liye zarur karega. But then again, pakka dost, you know, that's what matters. So thank you so much, Sonal. I love your message and I love being your friend. And thank you for sharing that picture with me, which we took in Mombasa.

0: good combination of Madhuri and Akshay Kumar. It's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. Now talking about Madhuri, finally I saw Ma Ben over the weekend. अब क्या ही कहें हम कुछ कुछ ऐसी जो बातें हैं हम नहीं कह सकते ऑन एयर बट मा बहन वॉज You know, sometimes you get the chance when the titles are like that. Like, I loved the film. I'm not saying it was not good. It was a nice, sharply crafted dark comedy. A little chaotic, a little bit of humor and commentary. वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उस बंदे की. उसका जरूरत नहीं थी. सावधान इंडिया से पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आया उसको. But I felt like three amazing actors. Madhuri Dixit, the one and only. Tripti Dimri, she was good. And Dharna Durga, she's very famous. Famous on socials for her acting skills. There was a proper not used, you know, कहते हैं उनकी acting skills का इस्तेमाल किया गया. The second half was like a bit slow. Performances were good, no doubt. But they could have done a bit better when it comes to storyline. कभी कभी क्या होता है you know, उसमें lack करते हैं और थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है पेस बट आई गेस ईच देमसेल्व्स इट्स स्टिल अ गुड वॉच सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड गो वॉच मा बहन ऑन नेटफ्लिक्स
1: डोंट जस्ट लिसन चूज इट रिक्वेस्ट योर सॉन्ग नाउ ऑन रेट्रो टू राइट नाउ
0: यस एब्सोल्युटली दिस इज योर शो यानी कि आपका मेरा रेट्रो टू राइट नाउ ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स आई हैव गॉट अ वंडरफुल रिक्वेस्ट फ्रॉम अमित फॉर यूफोरिया वंडरफुल वंडरफुल ट्रैक I love it too. 20 minutes past 2, you're on Retro to Right Now with Nilufer on East FM.

0: मेरे गले, हे कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तुम मेरी गली।
2: Niloufer on East FM.

0: बिल्कुल, हर मैदान हम फतेह कर सकते हैं अगर सही तरीके से हम उसे अप्रोच करें. आई नो सम डेज आर जस्ट नॉट वर्किंग, बट सम डेज यू कैन प्लान इट वेल. वेल, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज लेट मी सी हाउ यू कनेक्ट. यू नो ओके, जब हम मैदान की बात करते हैं या उसे फतेह करने की बात करते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मेन और वुमेन, इट्स फॉर एवरी वन. वी ऑल हैव आवर चैलेंजेस, वी ऑल हैव आवर बैटल्स, बट आई फील स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, वी एंड अप शेयरिंग, यू नो, दोस्त के साथ, कलीग के साथ, बच्चों के साथ, या वट एवर इन डिफरेंट वेज. मैन, आई फील वेमेन आर मोर वोकल. मैन समवेयर लैक दिस, दे डोंट स्पीक अप. एज मेनी मेल फ्रेंड्स आई हैव रदर, दे हैव सेड द सेम थिंग. फॉर हमें बहुत मुश्किल लगता है किसी से बात करना, और जब हम खुल के बताते भी हैं या कभी रो भी देते हैं तो हमें जज किया जाता है. सो कि ये भाई तुम आदमी हो, तुम क्यों ऐसे सब बोल रहे हो या तुम क्यों रो रहे हो. बट वाई आर मैन नॉट ह्यूमन beings, why is this stigma you know around men that they can't speak or they can't cry or they can't be emotional? We need to break this stigma and normalize vulnerability, because vulnerability is for men and women or for anyone. Okay, we need to check on them as well, and this message needs to be always raised on different channels or different ways, that men also need to speak up, men also need to seek help, men also need to talk, and men can also cry. So June is Men's Mental Health Awareness Month, and anytime you feel a man around you needs company, needs that conversation, needs that time to just, you know, put his head on your shoulder and cry, let him do. Okay, we'll talk more on that later. Retro to Right Now is all about so much fun, good music, and lots of gupshup on East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: East FM.
2: It's 2:31.
1: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
3: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or a related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.